0: पिकअप नेटवर्क इट इज दिल्ली
1: बदला भी लिया है और ये भी बताने आया है अब की बार मेरा माल पकड़वाएगा हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा
2: Son of a bitch.